अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार की तशहीर करना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की सेल्स टीम से रابطہ कीजिए। इंस्पायर एफएम की सेल्स टीम से रابطے के लिए 01582481810।

0: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: न मैं अजमी, न हिंदी, न इराकी और हिजाजी, के खुदी से मैंने सीखी दो जहां से बेनियाजी। तू मेरी नजर में काफिर, मैं तेरी नजर में काफिर, तेरा दीन नफ्स शुमारी, मेरा दीन नफ्स गुदाजी।

होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

चांद को देखने में कोई दिक्कत होती है जबकि बीच में बादल भी ना हो? लोगों ने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। इसी मजमून से मिलती जुलती एक और रवायत बुखारी मुस्लिम में हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला से मरवी है। मुसनद अहमद, तिरमिजी, दारकुतनी, इबन जरीर, इबन मुंजिर, तबरानी, बहकी, इबन अबी शैबा और बाज दूसरे मुहद्दसीन ने थोड़े लफ्जी इख्तलाफ के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत नकल की है, जिसका मजमून यह है कि अहल जन्नत में कम से कम दर्जे का जो आदमी होगा वह अपनी सल्तनत की वसत 2000 साल की मुसाफत तक देखेगा, और इनमें सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले लोग हर रोज 2 मरतबा अपने रब को देखेंगे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी कि उस रोज कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। इब्ने माजा में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि अल्लाह उनकी तरफ देखेगा और वो अल्लाह की तरफ देखेंगे, फिर जब तक अल्लाह उनसे पर्दा न फरमा लेगा उस वक्त तक वो जन्नत की किसी नेमत की तरफ तवज्जो न करेंगे और उसी की तरफ देखते रहेंगे। ये और दूसरी बहुत सी रवायात हैं जिनकी बिना पर अहल सुन्नत करीब करीब बिल इत्तेफाक इस आयत का यही मतलब लेते हैं कि आखिरत में अहल जन्नत अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होंगे, और इसकी ताईद कुरान मजीद की इस आयत से भी होती है कि कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौमइज़िल लमहजूबून, यानी हरगिज नहीं वो यानी फुज्जार उस रोज अपने रब की दीद से महरूम होंगे। सूरह अल मुतफ़फ़ीन आयत 15। इससे खुद बखुद यह नतीजा निकलता है कि यह महरूमी फुज्जार के लिए होगी न कि अबरार के लिए। यहां यह सवाल पैदा होता है कि आखिर इंसान खुदा को देख कैसे सकता है? देखने के लिए तो लाजिम है कि कोई चीज किसी खास जहत, मकाम, शक्ल और रंग में सामने मौजूद हो, रोशनी की शुआएं उससे मुनक्किस होकर इंसान की आंख पर पड़े और आंख से दिमाग के मरकज बीनाई तक उसकी तस्वीर मुंतकिल हो। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के मुतालिक इस तरह काबिल दीद होने का तसव्वुर भी किया जा सकता है कि इंसान उसको देख सके? लेकिन यह सवाल दरअसल एक बड़ी गलतफहमी पर मबनी है। इसमें दो चीजों के दरमियान फर्क नहीं किया गया है। एक चीज है देखने की हकीकत और दूसरी चीज है देखने का फेल सादिर होने की वो खास सूरत जिससे हम इस दुनिया में आशना हैं। देखने की हकीकत यह है कि देखने वाले में बीनाई की सिफत मौजूद हो, वो नाबीना ना हो और देखी जाने वाली चीज उस पर आया हो, उससे मख्फी ना हो। लेकिन दुनिया में हमको जिस चीज का तजुर्बा और मुशाहिदा होता है वो सिर्फ देखने की वो खास सूरत है जिससे कोई इंसान या हैवान बिलफेल किसी चीज को देखा करता है, और इसके लिए लामहाला ये जरूरी है कि देखने वाले के जिस्म में आंख नामी एक उज्व मौजूद हो, उस उज्व में बीनाई की ताकत पाई जाती हो, उसके सामने एक ऐसी महदूद मुजस्सम रंगदार चीज हाजिर हो जिससे रोशनी की शुआएं मुनाकिस होकर आंख पर पड़े और आंख में उसकी शक्ल समा सके। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि देखने की हकीकत का अमली जहूर सिर्फ उसी खास सूरत में हो सकता है जिससे हम इस दुनिया में वाकिफ हैं, तो ये खुद उसके अपने दिमाग की तंगी है, वरना दर हकीकत खुदा की खुदाई में देखने की ऐसी बेशुमार सूरतें मुमकिन हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस मसले में जो शख्स उलझता है वो खुद बताए कि उसका खुदा बीना है या नाबीना। अगर वो बीना है और अपनी सारी कायनात और इसकी एक एक चीज को देख रहा है, तो क्या वो इसी तरह आंख नामी एक उज़ से देख रहा है जिससे दुनिया में इंसान हैवान देख रहे हैं, और उससे बीनाई के फेल का सुदूर उसी तरीके से हो रहा है जिस तरह हमसे होता है? जाहिर है कि इसका जवाब नफी में है, और जब इसका जवाब नफी में है तो आखिर किसी साहिब अक्ल व फहम इंसान को यह समझने में क्यों मुश्किल पेश आती है कि आखिरत में अहल जन्नत को अल्लाह ताला का दीदार उस मखसूस शक्ल में नहीं होगा जिसमें इंसान दुनिया में किसी चीज को देखता है, बल्कि वहां देखने की हकीकत कुछ और होगी जिसका हम यहां इदराक नहीं कर सकते। वाकया यह है कि आखिरत के मामलात को ठीक ठीक समझ लेना हमारे लिए उससे ज्यादा मुश्किल है जितना 1-2 बरस के बच्चे के लिए यह समझना मुश्किल है कि अज़्दवाजी जिंदगी क्या होती है, हालांकि जवान होकर उसे खुद उससे साबका पेश आना है।

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ।

0: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: Du'as from the Quran and Sunnah. Du'a for when you wake up.

0: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
1: Inspire FM.
2: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: हक की आवाज़ कभी दबती नहीं, कभी झुकती नहीं, कभी मिटती नहीं। एतदाल, हुर्रियत फिक्र और सच्चाई का परचम। आइए सुनिए वो आवाज़ जो दलील से लबरेज, कुरान और सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर और हक की गवाही देती है। मैं हूँ इमाम हाफिज इजाज अहमद, आपके सामने पेश करूँगा प्रोग्राम आवाज़ हक में। हक की आवाज़, एक ऐसा पैगाम जो दिलों को बेदार करे, जहनों को रोशन करे। हर सोमवार 11 बजे ओनली ऑन इंस्पायर FM 105.1।
8: From the studios of Inspire FM, the time is now midnight.
0: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Du'as.